0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं। और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee. 100% future. Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: 101 FM।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी है कुशादा दामनो दिल और जबीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देखकर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: bumper to bumper hit music only on FM 101.
1: 101 FM.

0: 8 a.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Friday, 14th of Rabiul Awal, 26th of August 2026. This is Radio Pakistan, the news read by Friha Hassan. The headlines first. Pakistan and the United Kingdom have agreed to establish a structured dialogue mechanism to further strengthen bilateral ties. German Senate addressing second inter-parliamentary speakers conference in Cambodia has stressed for greater parliamentary unity to address global challenges. The election for leader of House in Azad Jammu and Kashmir Legislative Assembly will be held in Muzaffarabad today. Pakistan has called for strengthening United Nations peace operations to ensure their effectiveness and implementation. UN Secretary General has commended Pakistan's efforts for peace in Middle East. On the second day of second cricket test of three-match series against Pakistan, England will resume their first innings at 248 for 9 at Lord's today.
1: आज सुबह किसी का WhatsApp और किसी का bank account hack हो गया और कहीं एक business cyber attack का शिकार बन गया. साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द फिफ्थ डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स अगर आप स्टूडेंट हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk
2: दिस इज FM 101.1
3: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है।
4: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
5: Back to back. Hit music.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: I love FM 101.
2: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है। माओ अपने बच्चे नूं पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर दियो। पहले 6 महीनियां तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दुध दियो, इत्थों तक के पानी भी ना दियो। 6 महीनियां बाद मुनासिब इजाफी गजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ऐ पैगाम रेडियो पाकिस्तान वल्लों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: This is FM 101.
1: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?
2: मां दा दुद्ध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। मां अपने बच्चे नू पैदाइश ते पहले घंटे विच ही दुद्ध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीने तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुद्ध दियो, एथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीने बाद मुनासिब इजाफी गिजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध बिलाना जारी रखो। बिलावजा डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तो परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफाद आमा लई पेश कीता गया है।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और बरतानिया ने दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए बाज़ाबता मुज़ाकरात का एक मुनज़्ज़म तरीक़े कार वज़ा करने पर इत्तेफाक किया है। सेनेट के चेयरमैन ने कम्बोडिया में दूसरी बैनल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए वसी तर पार्लिमानी इत्तेहाद पर जोर दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब आज मुजफ्फराबाद में होगा। और लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स का खेल कल के स्कोर 248 रन 9 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM
6: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
7: Maada Dudh, bacche di pehli, mukammal, सब तो बेहतरीन गिज़ा है। माँ अपने बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे में ही दूध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीनों तक बच्चे को सिर्फ अपना दूध दो, इतों तक कि पानी भी ना दो। 6 महीनों बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा के नाल नाल 2 साल की उम्र तक अपना दूध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे के दुध ते फीडर की वरतों तो परहेज करो, क्यों जे माँ ने दुध का कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमाले पेश कीता गया है।
8: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: I love FM 101.

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर।

0: This is FM 101.
1: मादा दूध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। माँ अपने बच्चे नू पैदाइश ते पहले घंटे विच ही दूध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीने तक बच्चे नू सिर्फ अपना दूध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीने बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दूध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दूध ते फीडर दी वरतों तो परहेज करो, क्यों जे मां दे दूध दा कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वल्लों मफाद आमा लई पेश कीता गया है।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। मावां नूं अपने बच्चे दे पैदाइश दे घंटे दे विच दुध पिलाना शुरू कर देना चाहिदा है। पहले 6 महीनियां तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दुध दिओ, इत्थे तक कि पानी भी ना दिओ। 6 महीनियां दे बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिना वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ऐ पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मुफादे आमा लई पेश कीता गया है।
2: सुनते रहिए FM 101।
3: One oh one F.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब को ज़रई मसनूआत की बरामद के हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तामीरी राबतों पर इत्मीनान का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने लंदन में मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया है। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और शामी अवाम की खुशहाली के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का अदा किया है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ आज अपनी पहली इनिंग्स 248 रन 9 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू करेगा।
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। Register now at cyberhackathon.pk.
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: आपने FM 101 ट्यून किया।
7: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: माँ दा दूध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। मावां नूं अपने बच्चे दे पैदाइश दे घंटे दे विच विच दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिदा है। पहले 6 महीने तक

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: Kaz on the beat.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मादा दूध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिजा है। मां अपने बच्चे नू पैदाइश ते पहले घंटे विच ही दूध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीने तक बच्चे नू सिर्फ अपना दूध दियो, एथों तक के पानी भी ना दियो। 6 महीने बाद मुनासिब इजाफी गिजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दूध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दूध ते फीडर दी वरतों तो परहेज करो, क्यों जे मां ने दूध दा कोई ने मूल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ऐ पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफाद आमाली पेश कीता गया है।
3: दिस इज FM 101।
4: सुरर संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे.
1: दिस इज एफएम 101.
2: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है. मावां नूं अपने बच्चे दे पैदाइश दे घंटे दे विच विच दुध पिलाना शुरू कर देना चाहिदा है. पहले 6 महीनियां तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दुध दिओ, इत्थे तक कि पानी भी ना दिओ. 6 महीनियां दे बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो. बिना वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं. सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान. यह पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मुफादे आमा लई पेश कीता गया है.
3: I love FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे ने पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफद से मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया है। वजीर रेलवे ने कहा है कि कराची से रोहड़ी तक 480 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाने का काम अगले साल शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और इसके अवाम की खुशहाली के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का अदा किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सुनते रहिए FM 101.
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This is FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मादा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। माँ अपने बच्चे नू पैदाइश ते पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीनों तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीनों बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तो परहेज करो, क्यों जे मां ने दुध दा कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ऐ पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमाले पेश कीता गया है।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

Big Radio, Big Style. FM 101.

0: Big Radio, Big Style. Please, FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: मां दा दुद्ध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। मां अपने बच्चे नू पैदाइश ते पहले घंटे विच ही दुद्ध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीने तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुद्ध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीने बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुद्ध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुद्ध ते फीडर दी वरतों तो परहेज करो, क्यों जे मां ने दुद्ध दा कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफाद आमा लई पेश कीता गया है।
0: FM 101.

0: Tile. FM 101.
1: Bez mi, Ati.

Big Radio, Big Style. Please, FM 101. पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने FBR को टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का अमल मुकर्रा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर खित्ते की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। चीफ ऑफ डिफेंस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द से बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट लॉर्ड्स में जारी है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को मुकर्रा मुद्दत के अंदर टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहाती अमल के बारे में आज इस्लामाबाद में हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत करते हुए जारी की। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी लिमिटेड की तंजीमी नौ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इस्लाहाती अमल को तीसरे फरीक से जांच यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का मकसद मुल्क की तरक्की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इमदादी कोशिशों में मावनत के लिए नेपाल को हंगामी इमदाद भेज रहा है। उन्होंने आज सपहर अपने नेपाली हमनसब बलिंद्रा शाह के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान नेपाल में हालिया अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से नेपाली क़यादत और आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बलिंद्रा शाह ने कुदरती आफत के तनासुर में टेलीफोन करने और यकजहती और हिमायत का इजहार करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया।
1: We'll be back after this short commercial break.
2: आज सुबह किसी का WhatsApp और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
3: 101 FM।
4: माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और बेहतरीन गजा है। माएं अपने बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे ही से दूध पिलाना शुरू करें। पहले 6 माह तक माएं बच्चे को सिर्फ अपना दूध दें, यहाँ तक के पानी भी नहीं। 6 माह के बाद मुनासिब इजाफी गजा के साथ 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना जारी रखें। बिला जरूरत डब्बे के दूध और फीडर के इस्तेमाल से गुरेज करें। माँ के दूध का कोई नैमल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ये पैगाम FM 101 रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मुफाद आमा के लिए पेश किया गया।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

This is FM 101.

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान की

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको हिल मिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has directed the Federal Board of Revenue to complete the reforms process in the tax system within the stipulated time frame. The Deputy Prime Minister and Turkey's Foreign Minister have telephonically discussed the evolving regional situation. The Chief of the Defence Forces has reaffirmed Pakistan's commitment to further strengthening the long-standing strategic partnership with Saudi Arabia. Barrister Sayyid Iftikhar Ali Gilani of the Pakistan Muslim League Nawaz has been elected as the new Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir. The Kashmir Institute of International Relations has urged the newly elected Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation to address the deteriorating humanitarian and political situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. In the second cricket test of the three-match series against Pakistan, England were all out for 290 runs in the first innings at Lord's.
1: This is FM Pakistan.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: आज सुबह किसी का WhatsApp और किसी का bank account hack हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द फिफ्थ डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk
1: 101 FM
4: माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और बेहतरीन गजा है। माँ अपने बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे ही से दूध पिलाना शुरू करें। पहले 6 माह तक माँ बच्चे को सिर्फ अपना दूध दें, यहाँ तक के पानी भी नहीं। 6 माह के बाद मुनासिब इजाफी गजा के साथ 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना जारी रखें। बिला जरूरत डब्बे के दूध और फीडर के इस्तेमाल से गुरेज करें। माँ के दूध का कोई नैमल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ये पैगाम FM 101 रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मुफादे आमा के लिए पेश किया गया।
1: This is FM 101.
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
1: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

मिथक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मिथक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मिथक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मिथक सा।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: से लो।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: चलो चलो।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान नेपाल को सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही के बायस हंगामी इमदादी सामान भेज रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने सऊदी अरब के साथ दरीना तदवीराती शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। नीदरलैंड में FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आप बदल गए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपको ना अपने कुछ दोस्त होते हैं, ज़िंदगी के ताल्लुक़ होते हैं, उन पर बड़ा मान होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप सब दोस्तों से, सब ताल्लुकात से रोज़ाना मिलें, या हफ्ते में एक दफ़ा मिलें, महीने में एक दफ़ा मिलें, साल में एक दफ़ा मिलें। आप सालों भी नहीं मिले होते ना, लेकिन आपको अपने उस ताल्लुक़ पे, अपने रिलेशन पे, अपने उस दोस्त के ऊपर इतना मान होता है कि आप जब भी मिलेंगे ना, ऐसे मिलेंगे कि जैसे बस आप सदियों से मिलते आ रहे हैं और रोज़ाना मिलते आ रहे हैं, या फिर कोई गिला कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। ये ब्यूटी है रिश्तों की कि जब आप अपने रिश्तों से गिले निकाल देना, यकीन जाने गिले और ताने जो है ना, ये रिश्तों को डैमेज कर देते हैं। आप कायनात की रिकॉर्डेड हिस्ट्री उठा के देख लें कि जिन रिलेशन के अंदर ताने हैं ना, जिन रिलेशन के अंदर गिले शिकवे शिकायत है ना, वो रिलेशन कभी भी मजबूत नहीं हो। वो किसी भी बंधन में हो, आप किसी भी बंधन में हो, अगर आप ताने देने वाले हैं, आप गिले शिकवे करने वाले हैं, आप कंप्लेंस करने वाले हैं, आप लोगों की कंप्लेन करने वाले हैं, आप सिस्टम की कंप्लेन करने वाले हैं, आप हर वक्त कंप्लेनेंट रहेंगे ना, हर वक्त शिकायत और शिकवे में रहेंगे, आप खुद डिस्टर्ब रहेंगे, आप अपने एक कर्ब में मुब्तला रहेंगे, एक अजियत, एक तकलीफ़ में रहेंगे। आप देखेंगे ना, आप सोशल मीडिया को जब उठा के देखेंगे, आप इमेजिन कर रहे हैं कि कोई अगर अपनी पोस्ट लगाता है, सपोज़ कोई प्रोजेक्ट है, किसी प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया जा रहा है किसी भी लेवल पर, अच्छा उस पर आप अक्सर देखेंगे तनकीद करने वाले ज़्यादा होंगे। वो लोग होंगे जिन्हें खुद कुछ नहीं करना, लेकिन सिर्फ तनकीद करनी है, सिर्फ उसके ऊपर बातें करनी है। तो इस तनकीदी और तंज वाला जो रवैया ना, ये हमें बड़ा डिस्टर्ब करता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको डैमेज कर देता है। आप देखें जो बहुत ज़्यादा गिला शिकवा करने वाले लोग हैं ना, वो हर वक्त गिले शिकवे में ही रहेंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ज़िंदगी में ना गिला जो है ना, उसको ख़त्म करना है अगर ज़िंदगी में सुकून हासिल करना है। तो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आप कंफर्टेबल रिलैक्स तब होंगे जब आप अपने आप को ईजी रखें, रिलैक्स रखें, गो विद फ्लो, और बहुत ज़्यादा वो मत करें कि ये क्या हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे की उम्मीद रखें। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम
1: जनाब।
0: वालेकुम सर, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहब?
1: शरियार बात कर रहा हूँ जनाब।
0: शहरयार साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं इस टाइम पिंडी में हूँ, बेसिकली मैं नारोवाल से।
0: नारोवाल से हैं और इस वक्त आप पिंडी में हैं,
1: पाकिस्तान आर्मी से।
0: चलें जबरदस्त। शहरयार साहब क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से?
1: मौजू सर यही है कि आपने पूछा है कि हालात या वक्त इंसान, सर जी इंसान बदलता भी है और कुछ नहीं भी बदलता,
0: ठीक है।
1: वक्त हालात बदलते रहते हैं, इंसान को नहीं बदलना चाहिए,
0: ठीक है।
1: कुछ लोग बदल जाते हैं किस वजह से, चंद पैसे आ गए, दोस्तों को भूल गया, अपने रिश्तेदारों को भूल गया, इंसान को नहीं बदलना चाहिए,
0: ठीक है।
1: मैं ये मुद्दा रखता हूँ,
0: ठीक है।
1: इंसान को अपने रवैये का, अपने लहजे का, अपने इख्तियारात का गलत जायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। इंसान को उसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पे उसकी हैसियत है,
0: बहुत।
1: और वक्त तो बदलता रहता है, वक्त तो बदलता रहता है जनाब, तो चाहिए कि इंसान को वहीं पर रहना चाहिए जिधर उसकी हैसियत है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: तो
0: बिल्कुल
1: एक सर जी एक रिक्वेस्ट, आप जो आप बैकग्राउंड पे की चला रहे हो ना, मन अटकिया बेपरवाह के नाल
0: जी,
1: ये सर जी काइंडली मुझे, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते से वेट कर रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं लगी आपको बताने की, ये मुझे पूरा सुना दे प्लीज।
0: मैं नहीं गा सकूंगा सर, मैं सुना दूं?
1: नहीं नहीं और
0: यार मुझे 30 मार्च में ना डाले, इतना मुश्किल गाना है। मन अटक गया अल्लाह ना करे तोड़ा मन किसी भी परवाह अटक जाए।
1: मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें जो मैं, आपने कहा था कि मेरा म्यूजिक के साथ बहुत लगाव है, ये मुर्खियां राहत नहीं लगा सकता, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ,
0: राहत नहीं लगा सकता,
1: मैं कहता हूँ श्योरिटी के साथ।
0: लेकिन आपको ये किसने कहा है कि जो मुर्खियां लगाते हैं कि वो ही बड़े बड़े सिंगर होते हैं?
1: सर जी मैं कहता हूँ,
0: मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ
1: जी जी,
0: मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। अगर आप कहेंगे जो मुर्खियां लगाते हैं वो ही बहुत बड़े सिंगर होते हैं,
1: सर जी वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इनको राह साहब को फेम मिला है नुसर साहब की वजह,
0: बेशक इसमें कोई शक नहीं। नहीं, रात अच्छा सिंगर है, इसमें कोई शक नहीं कि रात फतेह अली खान

0: बाकायदा घराने से सीखे हुए हैं सिंगर हैं, इसमें इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मेरा मेरा जी बिल्कुल आप ऑन एयर पूरा पाकिस्तान दुनिया
1: दुनिया को निकाल के जो सुनाऊंगा ना निकाल के, मैं कहता हूँ कि वो राहत उसी ऐसी चीज निकाल के दिखा दे।
0: नहीं इस वक्त हमारा हमारा मुद्दा तो राहत है ही नहीं है ना, हमारा मुद्दा तो मौसीकी और अच्छी मौसीकी की हम बात करें, अच्छा सुर लगाने वाले सुरीले लोग मौसीकी को समझ के गाने वाले। सर बड़ा मुश्किल काम है, हम कह तो देते हैं कि वो यार
1: जी मुझे ये सुना दें, ये जो आपने बैकग्राउंड में चलाया होता है ना
0: जी जी। इस वक्त तो मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया हुआ है, इट्स अ स्पैनिश गिटार अरेबिक, बड़ा जबरदस्त है।
1: वो अगर प्ले कर
0: जी जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है इंसान की जिंदगी में ना, वक्त में जो वक्त के साथ साथ पेश आने वाले जो वाकियात हैं ना, वो भी इंसान को बदल देते हैं। एक नाकामी इंसान की ज़िंदगी में आती है ना, इंसान को बदल सकती है। और कभी कभी एक जो नाकामी है ना, वही नाकामी इंसान को तोड़ देती है। और कभी वही नाकामी उसे इतना मजबूत बना देती है कि अगली बार उसे गिरने नहीं देती। यानी आप किसी चीज़ से जब नाकाम होते हैं ना ज़िंदगी में, फेलियर्स ज़िंदगी में, वो इंसान को बुरी तरह तोड़ देते। किसी भी फील्ड में आप हैं, आप कुछ भी लाइफ में हो गया, आप फेल हो गए या फेलियर आपको मिल गया, वो आपको तोड़ देती है। लेकिन वही फेलियर आपको जो है ना मजबूत भी बना देते हैं। अच्छा कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको ज़िंदगी में एक जो धोखा होता है ना, या इंसान को वही धोखा जो इंसान को कभी बदगुमान भी बना सकता है, मगर फिर वही धोखा उसे इंसान को समझने का जो ना हुनर भी सिखा देता है। यानी आप किसी ने अगर आपको धोखा दिया है और आप उस धोखे से नुकसान आपने उठाया, और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी का एक चेंज आपको मिला, चेंज क्या मिला कि आपने उस धोखे से लर्निंग की, आपने सीखा। अगर आपने नहीं सीखा तो फिर ये आपकी अपनी अकल है, उस पर सोचना होगा। अच्छा फिर क्या होता है कि मगर अक्सर ये होता है कि एक जो जुदाई है ना, वो इंसान को तन्हाई कर सकती है कभी कभी ना बहुत, मगर यही जुदाई जो है ना उसे अपने से मिलने का मौका भी देती है। आप जब जुदा होते हैं तो आप किसी से भी, किसी रिलेशन से आप जुदा होते हैं, आप नहीं होना चाहते, लेकिन आपसे कोई रिलेशन जुदा हो गया, आप बिछड़ गए या वो बिछड़ गया या कुछ भी सर्कमस्टांसिस हो गए, कुछ भी हो जाए, फिर आप अपने आप से मिलते हैं, अपनी ज़ात से मिलते हैं, अपनी ज़ात से गुफ्तगू करते हैं, अपनी ज़ात से बात करते हैं, अपनी ज़ात से मुखातिब होते हैं, अपनी ज़ात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो जब फिर आप अपने अंदर जाते हैं ना, अंदर की दुनिया वो जो आबाद होती है ना, आय हाय हाय हाय, काश कि हमें अपने अंदर की दुनिया मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हो? ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक सर। कौन साहब?
1: आई एम मोहम्मद इकराम फ्रॉम रावलपिंडी।
0: अरे वाह, आई एम मोहम्मद इकराम फ्रॉम रावलपिंडी। सर क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से?
1: ये जी तमाम सुनने वालों को मेरी जन्म से वेलकम, खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम।
0: बिल्कुल
1: आप, तो आप आपकी पूरी 101 की टीम को मेरी तरफ से सलाम।
0: सर वालेकुम सलाम।
1: और मेरे जितने भी जाने पहचाने वाले हैं सबको मेरी तरफ से सलाम।
0: वालेकुम सलाम
1: जी।
0: हो गया सर?
1: तो मेरे जी हो मेरे प्यारे भाई?
0: बस सर अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक था। मैं एक ट्रैक चला रहा हूँ, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, ठीक है सर?
1: चलो ठीक है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जनाब। हम ट्रैक चलाने जा रहे हैं, शहरयार साहब हमारे साथ थे, लेकिन मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मन अटकया बेपरवाह दे नाल, और मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसे हो, आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये गाना सुनूँ। सो हियर वी गो।

0: और लाइव बजाए इसे। वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा ना कुछ बातें इस तरह की होती हैं कि बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना वो सिर्फ लफ्ज़ों से बात नहीं करता, उसका लहजा भी बोलता है, और कभी एक बहुत नरम सा लफ्ज़ दिल को सुकून दे देता है, और कभी एक मामूली सा जुमला इंसान के अंदर बरसों की खामोशी पैदा कर देता है। सो ये जो अल्फाज हैं ना, ये होते तो चंद लम्हों के हैं, मगर जो लहजे की चुभन है ना, कभी कभी उम्र भर साथ रहती है। वो कहते हैं अक्सर लोग ना, ये मैंने शायद मसला हमेशा अल्फाज का नहीं होता, कभी कभी मसला इस अंदाज़ का होता है कि जिसमें वो अल्फाज अदा किए जाते हैं, हमारी जो एक्शन होते हैं ना, एक्शन वो बड़ा काउंट करते हैं। जिस अंदाज़ में एक ही जुमला जो ना मोहब्बत से कहा जाए तो वो अपनाइत बन जाता है, और उसे से कहा जाए तो वो तौहीन महसूस होना शुरू हो जाती है। अब देखिए ना, जब आपको किसी से इख्तलाफ होता है ना, किसी से कोई किसी भी किस्म का इख्तलाफ या कोई नाराज़ी है किसी के साथ, या किसी के साथ कोई इशू चल रहा है, इख्तलाफात की सूरत में किसी का कहा गया हल्का सा जुमला है ना, वो बड़ा हमें चुभता है, बड़ा तकलीफ़ दे होता है, बड़ा अजियतनाक होता है, बड़ा हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर किसी से इख्तलाफ ना हो, मोहब्बत का एक सीन चल रहा है, सब चीज़ें ठीक हैं, ऑल इज़ फाइन, ऑल इज़ ओके, तो उस वक्त वो जो तल्ख जुमले हैं ना, वो भी हमें बुरे नहीं लग रहे होते, बस क्योंकि मोहब्बत होती है ना। इख्तलाफ जब होना, हमें हर बंदे के अंदर बुराइयाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और जब जिस बंदे से इख्तलाफ हो, फिर तो उसके अंदर तो बेशुमार हमें बुराइयाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये जो इख्तलाफात है ना, और लहजे की तलखियाँ हैं ना, ये रिश्तों को कमज़ोर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कैसे फरहान भाई?
0: अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा हमारे साथ?
1: मीर हसन बिरोही।
0: मीर हसन साहब, कैसे मिजाज हैं आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भाई का ठीक ठाक।
0: आपने शहर कौन सा बताया, कहाँ से बात करें? कराची से बात,
1: सब्जी मंडी के साथ।
0: बिल्कुल ठीक है, कराची से बात करें जी। सर क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से?
1: आज लेट ज्वाइन की, अभी पाँच मिनट होते।
0: अच्छा,
1: क्या मौजू था?
0: मौजू हमारा जी आज का के इंसान वक्त के साथ इंसान बदल जाता है या वक्त इंसान को बदल देता है।
1: ये अच्छा बात है, मगर
0: चलें कोई और बात ये बहुत अच्छी बात है, और फिर अगली बात करते हैं। कराची का मौसम कैसा?
1: कराची मसाला, ये दो दिन ऐसा करना में जोर, समझते
0: है? बिल्कुल समझते
1: हैं। जो बादल ऐसा है, बिल्कुल दो दिन से समझ सूरज निकलता ही, दो तीन दिन से एक हफ्ता समय पूरा
0: चलें, जबरदस्त
1: 15 दिन है मसाला। अच्छा है,
0: अच्छा
1: और एक दो सलाम दे सकता हूँ?
0: सर दे दें, एक दो ही है ना, तीन हो गई, एक दो तीन हो गई।
1: अच्छा चलो सही
0: सर।
1: एक किताब लाला, फरहान भाई, इमरान भाई, इमरान बादराबाद वाला,
0: ओके,
1: वसीम, दो और है हमारा दोस्त है, वो हमारा है भी अपना गिरोही है, दूर रहते हैं।
0: अच्छा गिरोही है,
1: मिस्त्री गिरोही हमारा, मीर हसन, बुलिया बुलिया अपना, मेरा नाम है बुलिया, और बुल्ला हसन और मिस्त्री गिरोही,
0: ठीक,
1: दोनों भाइयों को बहुत सलाम।
0: चलें बहुत शुक्रिया सर, वालेकुम
1: सलाम, सलामत रहो फरहान भाई।
0: जी जी जी,
1: थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा भूल जाए तो
0: कोई बात नहीं, कोई मसाला नहीं जनाब, हम ज्यादा भूल जाते हैं, आप थोड़ा भूलते हैं, हम अपना नाम भूल जाते हैं, आप तो थोड़ा भूलते हैं।
1: सलामत रहो, खुश रहो, सबको सलाम देना, ठीक
0: है, ऑन एयर
1: सलाम देना।
0: ओके ऑन एयर है आप सर, ऑन एयर सलाम चला गया सबको आपका।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: चलो सही है, खुश रहो, सलामत,
0: अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह
0: हाफिज। बस कॉलर कितने मजे के होते हैं ना, कितने स्वीट होते हैं। वो लहजे पे बात चल रही थी ना अभी, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता ना कि कभी कभी इंसान का जो अल्फाज है ना, वो याद नहीं रहते उसने क्या कहा था, क्या बोला था, सिर्फ उसका लहजा याद रखता है। तो ये जो लहजा है ना, और लहजे की सख्तियाँ, आप इसको जब सख्त कर लेंगे ना किसी के लिए भी, अगेन बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। बाज़ वो कहते हैं ना, वो अंदाज़ याद रहता है जिसमें किसी ने इसकी बात को नज़रअंदाज किया हो। सानिया बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, अमजद बोल रहा हूँ सियालकोट से।
0: जी अमजद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके?
2: अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं।
0: बिल्कुल ठीक ठाक। सियालकोट किस जगह से बात कर रहे हैं?
2: जी जी
0: जी जी, ये कौन सी जगह है
2: सर? एक बात तो बताएं
0: सर, सर प्लीज,
2: आपका जहर ज्यादा खतरनाक है, मोहब्बत का जहर ज्यादा खतरनाक है।
0: ये अपना अपना तजर्बा है सर, अपना अपना एक्सपीरियंस है सर, ये हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। अगर किसी को मोहब्बत का जहर मिला ना, तो वो कहेगा मोहब्बत का जहर ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी को सांप का जहर मिला ना, तो वो कहेगा सांप का जहर ज्यादा खतरनाक है।
2: बोलते सांप का जहर जिसको काटे ना वो फिर पानी मांगता, जिसको मोहब्बत का जहर काटे ना वो पानी भी नहीं मांगता।
0: मोहब्बत का जहर, अच्छा,
2: जिसको काटे ना वो पानी नहीं मांगता, सांप का जहर जिसको काटे ना वो फिर पानी मांग लेता है।
0: अच्छा, फिर अगेन सर अपना अपना तजर्बा है,
2: अपना आपके वो, आप लाहौर से है ना, लाहौर में याद है आपको मीनारे पाकिस्तान से मिलाओ जम मारी थी दो मोहब्बत करने वालों ने?
0: अच्छा,
2: याद है आपको? नहीं, उन्होंने पानी भी नहीं मांगा था।
0: ठीक है,
2: क्या तजर्बा है आपका?
0: मैं आपको ऑनर बताता हूँ, ठीक है?
2: नहीं नहीं, चलें ठीक है, ठीक है,
0: चलें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और जनाब 0421100101 इज़ अ डायलिंग नंबर जिस पे आप लोगों की कॉल्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम सलाम सर, कौन सा?
3: कैसे हैं फरहान भाई?
0: बिल्कुल ठीक ठाक।
3: गेस करें, काफी टाइम के बाद आपको कॉल की है।
0: गेस करूं मैं?
3: रावलपिंडी से हूं, बस इतना आपको छोटा सा ऑप्शन दे देता हूं।
0: यकीन जाने मैंने आपको पहचाना नहीं है।
3: रियली?
0: ना।
3: हक नवाज बात कर रहा
0: हूँ। जी हक नवाज, कैसे हैं आप? ठीक हैं
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। तो कैसा जा रहा है रबी अल्लाह का महीना?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बेशुमार इनायात हैं।
3: और इस,
0: ये महीना तो महीने? इतना खूबसूरत है, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है?
3: इसमें कोई शक नहीं। यकीन जाने के जब रबी अल्लाह आया उस दिन से लेकर
0: जी जी
3: आज आज मैंने छुट्टी की है। मैंने कहा चले आज का दिन मुझे छुट्टी दे दे, एक दो जगहों पर मिला था
0: माशाल्लाह,
3: लेकिन गले की भी कोई डिस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से मैंने माजरत कर ली है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता
0: माशाल्लाह,
3: तो बकाया कोई दिन ऐसा भी नहीं किया जिसमें सरकार सल्लम का मिलाद अटेंड ना किया।
0: अब नाते पढ़ते भी
3: मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाथ खान हुजूर का दिना
0: माशाल्लाह, बड़ी सआदत की बात है जी।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो क्या कहते हैं कि ये सब तुम्हारा करम है, अका की बात अब तक बनी हुई है।
0: बेशक, बेशक,
3: मेरा कोई कमाल नहीं है, ये करीम हस्ती का कमाल है कि जिसने मुझे चुन लिया है अपनी सनाखानी के लिए।
0: कोई शक नहीं इसमें सर, कोई शक नहीं।
3: राम भाई, क्या टॉपिक अभी मैंने ट्यून किया है रेडियो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा
0: सर जी, अगर हम बात करें कि इंसान वक्त के साथ इंसान बदल जाता है या वक्त इंसान को बदल देता है?
3: बहुत अच्छी क्वेश्चन है सर। एक इसके बारे में अपना जाती एक्सपीरियंस बताऊं?
0: जी जी जी।
3: जहाँ तक मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है ना फरहान भाई, वो ये है कि आई थिंक सो कि इंसान को जो है ना वक्त के साथ तब्दील होना पड़ता है। ये कितना कठिन मरला होता है ना, वक्त और हालात बहुत मुश्किल दोनों चीजें होती हैं। ऑटोमेटिकली इंसान को, जितना भी इंसान स्ट्रांग होना, एक तो उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है और दूसरा यह है कि इंसान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। प्राण भाई, थोड़ा सा अगर अगर आपके पास टाइम है तो इस पर मैं बात कर।
0: जी बताइए।
3: असल में जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना, खूनी रिश्ते जो होते हैं
0: जी जी,
3: ان میں جب انسان تبدیلیاں دیکھتا ہے نا تو پھر انسان کو بہت سارے سبق ملتے ہیں, بہت ساری تبدیلیاں اپنے آپ میں لانی پڑتی ہیں. بقایا جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بندے کو کچھ نہیں ہوتا, اتنی مطلب اذیت نہیں ملتی, اتنی تکلیف نہیں ملتی اتنا کہ اپنے ریلیشن سے, اپنے بلڈ ریلیشن سے,
0: نیچرلی بات ہے, نیچرلی
3: بلڈ ریلیشن سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ مطلب جو تعلقات ہوتے ہیں نا ان سے اگر کوئی دکھ کوئی تکلیف انسان کو ملتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ قبر کے کنارے تک انسان کو بھولے. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے.
0: نہیں سر, لیکن اس میں یہ نا کہ آپ کیوں بھولنا, آپ کہہ رہے ہیں نہ بھولے, لیکن بھول جانا بھی اچھی بات ہے نا. معاف کر دینا, معاف کر دینا اس سے اچھی بات ہے, درگزر کر دینا اس سے اچھی بات ہے. اگر یہ رویہ ہم اختیار کر لیں جہاں سے دکھ ملے, تکلیف ملے, رنج ملے, ہم معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں نا وہ سب ہم اللہ کی رضا کے لیے قائم کرتے ہیں نا. زندگی میں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. انفیکٹ
3: بیسیکلی فرام پہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں رشتوں کو نبھانے کی.
0: سر ہر بندہ کوشش کرتا ہے, ہر بندہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں رشتے نبھانے کی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ آڑے آ جاتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, بٹ اگر ہم رویہ یہ اختیار کریں کہ ہم درگزر کر دیں, ہم معاف کر دیں, ہم معاف کرنے والے نہیں ایکچولی نا, ہم دل میں رکھنے والے ہیں, معاف کم کرتے ہیں.
3: وہ اللہ بھی تو آنا پتنی اربوں لوگوں کی گناہ دیکھ کر بھی ان پہ پردے ڈالتا ہے, وہ ذات کتنی کری. لیکن یہ ہے کہ اس کے مد مقابل تو ہم نہیں بن سکتے کیونکہ ہم بشر ہیں. وہ ذات کریم ہے, وہ رحیم ہے,
0: بے شک بے شک.
3: اس کے مد مقابل تو ہم نہیں, ہم تو اس کی مخلوق ہیں. تو یہ اس کی سنت ہے, اگر ہم اپنا لیں تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال
0: بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی, تھینک یو
3: سر, آپ نے قیمتی ٹائم دیا
0: سر. سر سر
3: سب سننے والے کے لیے میں اس سے السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویل جناب, ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے کالر ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑے اعزاز کی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنے محبوب کی ثنا خوانی کے لیے. آپ بڑے خاص لوگ ہیں, اور بڑا خاص مرتبہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں, نیکی کے کاموں, اپنی محبت, اپنی توصیف بیان کرنے کے لیے چن لے, اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لے. آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جی. اور اس میں بس میری درخواست ہمیشہ اپنے دوستوں سے یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, لوگوں کو درگزر کرنا ہے, لوگوں سے معافی مانگنی ہے. تعلقات تو ایسے ہی ہیں پھر جی, ہر جگہ چیلنجز ہیں, ہر جگہ معاملات میں. السلام علیکم.
4: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام.
4: کیسے ہیں آپ؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سر؟
4: میں ناصرہ بول رہی ہوں رنگی ٹاؤن سے.
0: جی ناصرہ, کیسی ہیں آپ؟
4: میں نے کال جی جو آپ لوگ شو کر رہے تھے نا 14 اگست کے حوالے سے, میں نے کال دیکھی جب میں نے آپ کو بولا تو لیکن چار کتنے سارے چاند کے نام لیتے لینے سے پہلے ہی کال کر دی تھی میری. تو
0: آپ ابھی نام لے لیں چاند کے سب. میں نے کہا آپ ابھی نام لے لو چاندوں کے سب, ابھی ہم آنر کر دیتے ہیں.
4: ابھی کافی ٹائم آپ کا پھر ضائع ہو جائے گا.
0: اچھا اچھا اچھا, چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ کی. ناصر آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہو گی؟ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہو گی ناصرہ؟
4: کہہ رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے, اور ایسا ہوتا ہے کہ بدلنا بھی پڑتا ہے کیونکہ وقت اور حالات تو ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ وقت انسان کو نہیں بدلتا, انسان بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ.
0: انسان بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, بالکل ٹھیک.
4: وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے بالکل. اور بھائی آپ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کا شو کون کون سے دن آتا ہے؟
0: میرا شو جمعے کی رات 10 سے 12 اور ٹیوزڈے 8 سے 10.
4: کون سے دن آپ کے دن؟
0: فرائیڈے 10 to 12 and Tuesday 8 to 10. بہت شکریہ
4: بھائی,
0: بہت شکریہ. اللہ حافظ. That was an Asra with us, हमारे साथ थी. थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का. एक ट्रैक मैंने लाइन अप किया हुआ है काफ़ी अच्छे से, मैं सोच रहा हूँ कि उसको चलाऊँ. एंड द ट्रैक इस कॉल, मुझे रिक्वेस्ट की थी इस ट्रैक की. आई थिंक मैं जब शो में आया था उस वक्त मुझे इस ट्रैक की रिक्वेस्ट आई थी. सो दिस ट्रैक इस अच्छा यार, बड़ा मुश्किल होता है ना वहाब साहब, अपना हाल दिल हर एक से बंदा बयान नहीं कर सकता. लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं हर एक की, कि जिससे आप अपना हाल दिल, अपने दिल की बात बयान कर सकते हैं, है ना? एग्री. सो जनाब, दिस ट्रैक इज़ फॉर द ऑल द ब्यूटीफुल लवली एंड लाइवली लिसनर्स. शब के शहर में आपकी समात होगी. नज़र करेंगे, मुझे कहते हैं फरहान खान. वन ओवर इंटरनेशनल की इस आवाज़ को पाकिस्तान भर में सुना जा रहा है. इस वक्त आप लाहौर स्टूडियो से इस शो को सुन रहे हैं. सो हमारे साथ रहिए. आज का मौजू हमारा है जी कि इंसान वक्त के साथ इंसान बदल जाता है या वक्त इंसान को बदल देता है.

0: इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। और जनाबी कॉलर हमारे साथ हैं, लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए।
0: परवीन आसिफ फ्रॉम कराची। अरे वाह, कराची वाले तो जिंदाबाद। क्या बात,
1: जिंदाबाद। अभी वो जो आए थे ना, वो बरोही साहब बेचारे इतने मासूम से वो आदमी है,
0: बहुत अच्छे।
1: क्या बताऊँ आपको, हमें याद है उनको, मैं सुनती थी उस स्टेशन पे जब, अब मैं नहीं जा रही। करते हैं कॉल, बहुत ही सीधे मासूम से आदमी है।
0: अल्लाह उनको खुश रखे। सलाम।
1: हाँ, खुश रखे।
0: ये बड़े प्यारे लोग होते हैं जी, ऐसे सीधे।
1: वाकई वाकई, किसी की शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। वाकई ऐसे ही लोग अच्छे हैं फरहान। आज के दौर में ना शिकवे शिकायतें वाकई बहुत दूरियां पैदा कर देती हैं,
0: है ना?
1: मेरा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि हर वक्त शिकवा कर करके, शिकायत कर करके, अगर आपने किसी को अपने से करीब कर भी लिया तो इसका फायदा क्या? दिलों में तो वही सारी बात है। अगर सच्चे सच्चे हैं दोनों तरफ से तो फिर तो बात सही है, वरना तो वही है ना कि बस इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त अब हम जुदा हो जाएं।
0: जुदा हो जाएं
1: तो बस ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के दिल में कदूरतें रखते हुए हम एक दूसरे से मिल रहे हैं उसी खुलूस से। ये मैं इसकी बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। मिलना है तो साफ और सच्चे दिल से, और वरना नहीं,
0: वरना
1: बिल्कुल भी नहीं, है ना? किसी को धोखा देना, किसी के खिलाफ इस तरह की साजिशें करना, ये तो है बुद्धू बुद्धू बन जाएगा, चलो ये करें वो करें वो करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। फरहान, मैं कहती हूँ किसी के जज्बात से कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी असलियत एक ना एक दिन तो सामने आ जाएगी, यकीनी तौर पे आ जाएगी। और फिर जो सामने वाले का, तो क्या जो जिसको आप सुना रहे हैं उसका दिल जो टूटेगा ना, वो फिर आपको कभी कबूल नहीं करेगा, आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन जिसके लिए दिल में मोहब्बत है, वो मिले या ना मिले, देखे या ना देखे, जैसे आप अपने दोस्त का भी बता रहे थे, ऐसे लोग बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी तहरीर सुनाऊं, अगर टाइम हो थोड़ा।
0: जी जी जी जी।
1: देखिए, बहुत खूबसूरत है, मुझे मैंने कहीं देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये कितनी खूबसूरत बात है कि कोई बिना मतलब के आपको कॉल करे, ना कोई जरूरत हो, ना कोई फायदा, बस दिल चाहा और आपने आवाज सुनने को फोन मिला लिया। और इस कॉल का वाहिद मकसद सिर्फ ये हो कि आपकी खैर व आफियत पूछ ली जाए। ऐसी फिक्र आम नहीं होती, ऐसी फिक्र आम नहीं होती। ये वो मोहब्बत है जो लफ्जों से नहीं नापी जाती। जब कोई सिर्फ इसलिए याद करे कि आप ठीक हैं या नहीं, तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। ये एहसास बता देता है कि कहीं ना कहीं कोई दिल आपके लिए धड़क रहा है। बिना मतलब की ये छोटी सी तवज्जा दरअसल आपसे बड़ी मोहब्बत होती है। और यही ख्याल इंसान को दुनिया में खास बनाने का एहसास, बनने का एहसास दे जाता है, खास होने का एहसास दे जाता है। मुझे इतनी प्यारी लगी ना ये तहरीर, हर ऐसे बंदे को सुना देनी चाहिए कि जो अपने मतलब से तो याद आ जाती है, फोन कर लेते हैं, वैसे सालों महीनों गुजर जाए कोई परवाह नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही मेरे ख्याल में फरहान ज्यादा बेहतर है। दोस्ती उससे रखिए जो आपके साथ मुखलिस हो, आपकी पीठ पीछे भी बात करे तो आप।
0: अच्छा परवीन जी, मुझे बताएं मुखलिस कौन बंदा मुखलिस है, इसके पैरामीटर्स हैं?
1: देखिए, पैरामीटर्स तो क्या है, हम लोग खुद ही बनाते हैं फरहान। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो किसी तकलीफ में है, या मैंने सुना है किसी से उसके बारे में कुछ, तो मेरा काम है कि मैं फौरी तौर पर उससे रब्ता करूँ। रब्ता नहीं हो रहा तो मैं जाके देखूंगी आखिर वजह क्या है, क्यों परेशान है, चाहे उसने मुझे कब से फोन नहीं किया, नहीं पूछा, कोई बात नहीं। लेकिन जब सुन लिया तो जाना फर्ज बनता है। मैं छोटी छोटी बातें हैं, यही मोहब्बतें बढ़ाती हैं फरहान, और यही ख़त्म कर देती हैं। आप अपने दिल में इतनी वसत रखें, जब किसी को दोस्त बनाए तो इतनी वसत रखें, अगर उसकी कुछ गलतियां भी हैं ना, तो कहा गया है कि एक बड़ा सा घड़ा खोदो और उसमें दफना दो बुरी बातों को और गलतियों को, और फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अगर वही उसको सुनाते रहे, उसको बार बार तंज करते रहे, तो ये दोस्ती नहीं है आपकी, इससे बदला लेने वाली बात है, दिल दुखाने वाली बात है। मेरा तो ये ख्याल है।
0: क्या बात,
1: अगर आप ऐसी करते हैं, जीते रहे आपको,
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
1: सबके दिल खुश हो जाता है, जीते रहे, आबाद रहे, आपसे मुंतकिल जो भी लोग हैं सब बहुत अच्छे रहे। सब सुनने वालों को मेरा सलाम एंड अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। जनाब, नियत शोक भरना जाए कहीं, अच्छा जी, ऑटोमेटिकली मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक पे ये ट्रैक चल रहा था। नियत शोक भर ना जाए कहीं, वैसे तो ये मैडम की खूबसूरत सी आवाज़ में ये ट्रैक है, बट राइट नो मैं इस ट्रैक को चलाऊँगा, आप लोगों की समातों की नज़र करूँगा, उन खूबसूरत समातों की नज़र जो इस वक्त हमें सुन रही है शब के इस पहर में, पाकिस्तान भर में एफ एम 101 इंटरनेशनल की ट्रांसमिशन को सुना जा रहा है, जहाँ जहाँ आप हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान भर में, आपके नाम

0: Alright, now welcome back. एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं, नीयत शोक भर ना जाए कहीं। एक बहुत ही दिलकश सी गीत और बहुत खूबसूरत सी आवाज़। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि जी इस वक्त हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत खूबसूरत दोस्त, जिसे कहते हैं ना कि दोस्तों का गुलदस्ता खुशबू से भरा, और जैसे ही इनकी कॉल आई तो इनकी महक से तो हम महकते रहते हैं, लेकिन इनके साथ मज़ीद जो हमारे खुशबूदार दोस्त हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। सो मैं इन सबको वेलकम करूँगा, और मैं पहले अपने ये बहुत ही खूबसूरत से दोस्त, हमारे दोस्तों के दोस्त एंड द वन एंड ओनली, आप सब इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनको देखते रहते हैं, इनको सुनते रहते हैं, डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ हैं। सर वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: रहमतुल्लाह,
1: कैसे मिजाज
0: आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, इट्स ऑनर फॉर मी। आप हमारे साथ हैं, मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं, शेख साहब हमारे साथ हैं, इतने इतने प्यारे लोग। आपने एक पूरी अपनी गाड़ी के अंदर ना खूबसूरत से गुलदस्ता जो है ना उसको छुपाया हुआ है।
1: हम सफ़र में हैं जी, और हम सब मुसाफिरों की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से, आपके वो जो रेडियो के रिश्ते में बंधे हुए मोहब्बत के रिश्ते में जितने सारे दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन सबको बहुत ही प्यार भरा सलाम और दुआएं।
0: बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, मैंने कहा अब आप तशरीफ़ लाएँ तो आपसे पूछ लिया जाए। हम अपने दोस्तों से भी ये पूछ रहे हैं, सुनने वालों से भी, कि वक्त जो है वो इंसान को बदल देता है कि या वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, क्या वजह है? कैसे? अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये बदल गया या वो बदल गया, हम लोगों से ये शिकायतें सुनते हैं कि यार, क्या वक्त इंसान को बदल देता है कि या वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, या इंसान को बदल जाना चाहिए?
1: मेरे ख्याल में जितना कि मैं ज़िंदगी को समझ पाया उसके हिसाब से वक्त ना वक्त बदलता है ना बंदा बदलता है, असल में बंदे की वक्त के हिसाब से तरजीहात बदल जाती हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: वक्त जब तरजीहात बदलती हैं तो फिर आपका मिजाज भी बदलना शुरू हो जाता है, रवैये भी बदलना शुरू हो जाते हैं, और आप अपने मकासद की तरफ जब सफर करते हैं तो उन तकाजों के तहत आपकी हिकमत अमली जब बदलती है तो देखने वालों को यूं लगता है अपेरेंटली शायद कोई शख्स जो है वो बदल गया है। हालांकि वो अपनी सिंस में ठीक सफर करता है, और हम सबको इसे यानी एक नाखुशगवार तब्दीली की बजाय इसे एक खुशगवार डेवलपमेंट के तौर पर लेना चाहिए कि हमारे दोस्त, हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो अपने नस्बुलैन की तरफ, अपनी लाइफ टारगेट की तरफ जो है वो सफर कर रहे हैं, और हमें यानी अगर हम अमली तौर पर उनके साथ हमें या मददगार ना भी हो सकें तो इतनी स्पेस जरूर हमें क्रिएट करनी चाहिए और उन्हें देनी चाहिए कि जिसमें वो अपने मकासद की तरफ, अपने ख्वाबों की तकमील की तरफ जब सफर कर रहे हों तो हमारी तरफ से उनको दुआओं की सूरत में एक हौसला और एक मोहब्बत जो है वो पहुंचती रहे, और हम उनके लिए किसी न किसी दर्जे पे उनके टारगेट्स, उनके ख्वाब, उनकी तकमील में आसानी का जरिया बने, ना कि हम गिले शिकवे करके उनके उनके जो है एक जिसे कहते हैं ना उनके लिए फिक्रमंदी का बायस बन जाए। इस तरह का मामला है।
0: कितनी खूबसूरत बात आपने की कि हमें एक दूसरे को समझना बड़ा जरूरी है और उसकी
1: आसानी का जरिया बने, ना कि हम गिले शिकवे करके उनके उनके जो है एक जिसे कहते हैं ना उनके लिए फिक्रमंदी का बायस बन जाए। इस तरह का मामला है।
0: कितनी

रात भर नरम हवाओं के झोंके वक्त की मौजें रवां पर बहते तेरी यादों के सफीने लाए के जजीरों से निकल कर आए गुजरे वक्त का दामन थामे तेरी यादें तेरे गम के साए एक एक हर्फ वफा की खुशबू मौजाए गुल में सिमट कर आए एक एक अहद वफा का मंजर ख्वाब की तरह गुजरते बादल तेरी कुर्बत के महकते हुए पल मेरे दामन से लिपटने आए नींद के बार से बोझल आंखें गर्दे याम से धुंधलाए हुए एक एक नक्श को हैरत से तके एक एक नक्श को हैरत से तके लेकिन अब इनसे मुझे क्या लेना मेरे किस काम के ये नजराने एक छोड़ी हुई दुनिया के सफीर मेरे गमखाने में फिर क्यों आए दर्द का रिश्ता रफाकत की लगन रूह की प्यास मोहब्बत के चलन मैंने मुंह मोड़ लिया है सबसे मैंने दुनिया के तकाजे समझे अब मेरे पास कोई क्यों आए रात भर नोहा को ना याद की बिफरी मौजें मेरे खामोश दरोबाम से टकराती हैं मेरे सीने के हर एक जख्म को सहलाती हैं मुझे एहसास की इस मौत पर सह देकर सुबह के साथ नगुसार पलट जाती हैं

मुझे तुझसे इश्क नहीं नहीं मुझे तुझसे इश्क नहीं नहीं मगर है हसीना ए नाज़मी, तू हम मुझसे दूर अगर कभी तुझे तुझे ढूंढती हो नजर कभी, तो जिगर में उठता है दर्द सा, मेरा रंग रहता है जर्द सा, मगर है हसीना ए नाज़मी, मुझे मुझे तुझसे इश्क नहीं नहीं तू अगर हो मजमा आम में किसी खेल में किसी काम में, तू अगर हो मजमा आम में किसी खेल में किसी काम में, तो मैं छुप के दूर ही दूर से तुझे तुझे देखता हूँ गरूर से, तुझे देखता हूँ गरूर से, मगर ऐ हसीना ऐ नाज़नी, मुझे मुझे तुझसे इश्क नहीं नहीं तुम कहो ये हमसे अगर कभी हमें ला दो ला लो गोहर कभी, तो मैं दूर दूर की सोच लू, मैं फलक से तारे भी नोच लू, ये सबूत शौके कमाल दू तेरे पांव पर उन्हें डाल दो, तेरे पांव पर उन्हें डाल दू, मगर मगर ऐ हसीना ऐ नाज़नी, मुझे तुझसे इश्क नहीं नहीं।

0: क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो जनाब पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक
0: है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है, कहां
1: से? पता नहीं, चार हफ्ते से आपको कह रही हूँ मुझे नई दफ्तर की गजल सुना दे।
0: मुझे मजा आ रहा है, मैंने सुना
1: प्रोग्राम तो नहीं, आप खुद सुनाए ना।
0: अच्छा बताए कौन सी गजल?
1: चार हफ्ते से आपको कह रही हूँ जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं।
0: जहाँ तेरा नक्शे, मैं हर दफा भूल जाता हूँ, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चले अभी सुना देता हूँ ताकि ये अब उधार बाकी ना रहे। ठीक है, सलामत रहे आप।
1: ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।
0: जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबां खयाबां इरम देखते हैं, तेरे सरो कामत से एक कदे आदम कयामत के फितने को कम देखते हैं। तमाशा के ऐ महवे आईना दारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं। बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। इतने अशार काफी हैं जनाब, थोड़ी तशनगी छोड़ देनी चाहिए। कॉलर शामिल करते हैं। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। हर बात है जिसकी प्यारी, हैदराबाद से कॉल करते हैं आपको, शाहिद अंसारी।
0: अच्छा, अपनी तारीफ आप खुद ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ जनाब, आप कैसे हैं? ठीक है
2: भाई, शुक्र है मेरे मौला का, फासर हो जाएगा का बड़ा एहसान है, माशाल्लाह
0: माशाल्लाह। ठीक है, क्या फरमाएंगे हजूर?
2: अच्छा, मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं चार जबान में गाने गा लेता हूँ, तो आज अगर आप कहें तो मैं सिंधी में गजल सुनाऊंगा।
0: किसकी, कौन सी गजल?
2: सिंधी, सिंधी जबान,
0: सिंधी में सुना दे। कौन सा? मुझे तो समझ नहीं आएगी लेकिन सुना दे।
2: मगर वो आपको ले में सुनने मजा आ जाएगा।
0: अच्छा ठीक है, आपको इसका भी यकीन है, सुनाइए सुनाइए। मोबाइल भी कह रहा है बस करें। बहुत अच्छा जनाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजूर, मैं बंद कर दूं, आप गाते रहिए फिर। अच्छा आपको चार मिनट बाद पता चलेगा जी कॉल बंद हो चुकी है। बहुत अच्छे जनाब, खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए।

0: एक और कॉल लूंगा जनाब, फिर कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो?
0: बहुत अच्छा हूँ जनाब, कौन है, कहाँ से?
1: मैं अदनान बात कर रहा हूँ अटक से।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा सर, गुलाम अली का एक कलाम लगा देंगे?
0: नहीं, मैं नहीं लगाता, फरमाइश जनाब। मैं सही कह रहा हूँ, मैं फरमाइश नहीं लगाता हजूर, मैं अपनी मर्जी के गाने लगाऊंगा, आपको सुनने पड़ेंगे।
1: वो तो सर हम तो चाहते हैं कि आप सुनाते जाएं, हम सुनते जाएं, ये रात सुहानी है।
0: ऐसी बातें करें ना, ये क्या बात हुई वो अलग गाना लगा दे। ऐसी बातें करें,
1: हम सब मोहब्बत के मारे हुए लोग हैं।
0: अच्छा,
1: तो आपकी शायरी से हमें बड़ा सुकून मिलता है।
0: बस
1: ऐसा कहते है कि गहरी जगह पे चले जाए, होता है ना तनखा वेट केवल,
0: गहरी जगह पे चले जाए,
1: बहुत गहरी, मतलब कि बस तनखा और कोई चीज ना हो साथ।
0: ठीक है, ठीक है।
1: फिर आपके सर शो सुने तो फिर रूह जो है ना जैसे जिस्म से निकल जाए ना।
0: ओए होए होए होए, रूह जिस्म, गहरी जगह पे तो आप पहले ही पहुंच गए थे, आपने रूह भी निकाल दी तो ऊपर से मिट्टी डाल
1: रहा है। निकल जाएगी ना तो सुकून तो हो जाएगा ना। जाहिर सी बात है कि हम रोज मरते हैं उसकी यादों में।
0: आए हाय, तो आए हाय,
1: इससे बेहतर है ना कि बंदा एक दिन चले तो जाने,
0: चले यादों पे बात करते हैं अभी,
1: जो रोज याद आती है ना,
0: चले
1: वो बहुत तड़पाती है।
0: ठीक है, यादें इंसान को तड़पाती हैं। ठीक है, चलें ऐसी बातें करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: सर लगा दे, हम तेरे शहर में।
0: मैं नहीं लगाऊंगा हुजूर, मैं नहीं लगाऊंगा। सलामत रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। जी हाँ, ज़राए तफन्नुन कुछ गुफ्तगू निकल ही पड़ी, और ऐसा ही है जनाब, यादें जो हैं वो जब डेरे डाल लिया करती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। और फिर वो कहता है कि यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, और तुम्हारी याद तारी हो रही है, बड़ी ही यादगारी हो रही है, तुम्हें तो लौट कर आना नहीं है, मुझे तो इंतजारी हो रही है, मेरे अंदर कोई लड़ मर रहा है, बड़ी तखरीबकारी हो रही है, तेरे कूचे में तो साजिश हुई थी, वहां क्यों आहजारी हो रही है, तेरे अंदर कहां सब्जा उगेगा, खिजा में काश्तकारी हो रही है, मुझी पे डाल दे सारा खसारा, तुझे क्यों शर्मसारी हो रही है, ये दुनिया की मोहब्बत और ये दुनिया तुम्हारी थी, तुम्हारी हो रही है, मेरे अंदर कोई लड़ मर रहा है, बड़ी तखरीबकारी हो रही है, तुम्हारी याद तारी हो रही है, बड़ी ही यादगारी हो रही है।

जी हाँ जनाब, ऐसे हुआ करती हैं यादें। और मनकश हो जाया करती हैं हमारे अजहान के नेहा खानों में। इंसान मुआशरती है और उसको मुआशरत में रहना है, उसको लोगों के साथ रहना है। कुछ रवैये होते हैं, कुछ चेहरे होते हैं, कुछ जुमले हुआ करते हैं। कोई वक्त हुआ करता है जो इंसान गुजारता है, कोई मकाम होता है, कोई खुशबू होती है, कोई मौसीकी होती है, कोई मुस्कान होती है, कोई लम्स होता है। ये सब कुछ यादें बन जाती हैं और हर गुजरता लम्हा माजी बनता चला जाता है। कैसी अजीब बात है अच्छे वक्तों में कि वो बड़ी जल्दी बीत जाते हैं। सदियां लम्हों की तरह गुजर जाया करती हैं और जब कोई वक्त बुरा होता है तो लम्हे सदियों पर मोहित हो जाते हैं और वक्त गुजरने का नाम ही नहीं लेता। ये शायद हम इंसानों के अंदर ऐसा कुछ है कि हम इतने जल्दबाज हो जाते हैं कि वो वक्त बहुत जल्दी गुजार दिया करते हैं। जो खूबसूरत हुआ करता है, जो अच्छा हुआ करता है, जो हमें भा रहा होता है, जिसमें हम तमानियत मुसर्रत महसूस कर रहे होते हैं, या फिर बाद में सोचें तो उसको वैसे महसूस किया नहीं जा सकता। कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन ज्यादातर जो महसूस बाद में कर सकता है इंसान और जिसका जिक्र ज्यादा करता है, वो बुरा वक्त ही हुआ करता है, कोई गम ही हुआ करता है, कोई तकलीफ ही हुआ करती है। लेकिन क्या है कि ये खाली जहन और इस खाली जहन के नेहा खाने जिसमें हर एक शय मुनक्कश होती चली जाती है, वहां ये यादें डेरे डाल लेती हैं। और कभी जैसा कि पहले जिक्र किया कि इस तेज रफ्तार दुनिया में कभी कोई मौका मिल जाए ऐसा, कुछ इंसान मुजमहिल महसूस कर रहा हो और कोई एक तन्हा रात मयसर आ जाए, तो पटारी खोल लिया करता है उन यादों की और फिर वो सारा सामान अपने सामने रख कर उसको छूता चला जाता है, उसको महसूस करता चला जाता है। और कोई रास्ता उसके पास होता नहीं है, अपने वजूद से बाहर आके अपने आप को देखता हुआ इंसान, अपने आप से मिलता हुआ इंसान उन तमाम यादों को अपने सामने रख कर रहे एक एक लम्हे को याद करने की कोशिश करता है। और उन तमाम यादों का महवर कोई एक शख्स, कोई एक चेहरा, कोई एक आवाज, जिस पर उसका पूरा माजी मुनहसिर होता है। वो सिर्फ उसी को यादें कहता है। ऐसे मासूम हुआ करते हैं इंसान। मुझे तुम याद आते हो किसी सुनसान सपने में छिपी ख्वाहिश की हिद्दत में, किसी मसरूफियत के मोड़ पर तन्हाई के सहराओं में, या फिर किसी अनजान बीमारी की शिद्दत में। मुझे तुम याद आते हो किसी बिछड़े हुए की चश्मे नम के नजारे पर, किसी बीते हुए दिन की थकन की ओट से, या फिर तुम्हारे जिक्र में गुजरी हुई शब के इशारे पर, किसी बस्ती की बारौनक सड़क पर और किसी दरिया किसी वीरान जंगल के किनारे पर। मुझे तुम याद आते हो मेरी चुपके कुएं में आरजुओं के बदन जब तैरते हैं और किनारे से कोई बोले तो लगता है अजल आवाज देती है, मेरी बेचैनियों में जब तुम्हारी तंदखू रंजिश खटकती है, तुम्हारी याद तुम्हारी बेदर्दी सुलगती है, या फिर मेरी आंखों के सहरा में तुम्हारी याद की तस्वीर जलती है, जुदाई आंख मलती है, जुदाई आंख मलती है। मुझे तुम याद आते हो मुकद्दर के सितारों पर, जमानों के इशारों पर, उदासी के किनारों पर, कभी वीरान शहरों में, कभी सुनसान रस्तों पर, कभी हैरान आंखों में, कभी बेजान लम्हों पर।
मुझे तुम याद आते हो। सुहानी शाम हो कोई, कहीं बदनाम हो कोई, भले गुलफाम हो कोई, किसी के नाम हो कोई, मुझे तुम याद आते हो। किसी के नाम हो कोई, मुझे तुम याद आते हो।

कहीं बारिश बरस जाए, कहीं सहरा तरस जाए, कहीं काली घटा उतरे, कहीं बादे सबा ठहरे, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। मुकद्दर के सितारों पर, जमानों के इशारों पर, उदासी के किनारों पर, कभी वीरान शहरों में, कभी सुनसान रस्तों पर। सुहानी शाम हो कोई, कहीं बदनाम हो कोई, भले गुलफाम हो कोई, किसी के नाम हो कोई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।

तुम्हारी याद की खुशबू लगाई थी मैंने, तमाम रात मेरे जिस्म जान महकते रहे। सुरूर हिजर के मौसम में भी ना मांद पड़ा, हवास जब्त के आलम में भी बहकते रहे। दयारे ख्वाब में कुछ तायराने खुश आवाज तुम्हारे आने की उम्मीद में चहकते रहे। नवाहे दिल में कई रोशनी भरे साए, वफूरे शोक से गाते रहे लहकते रहे। मैं तुमसे दूर था, मैं तुमसे दूर था, लेकिन तुम्हारे हाथ में था। गुज़िश्ता शब मैं किसी और कायनात में था।

0: ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना फोन को पीछे करें, आपकी आवाज से ज्यादा आपकी फूंकें लग रही हैं, सांसें लग रही हैं फोन को। हाँ नहीं, मैं आज इत्तेफाक से आया हूँ जनाब, मुझे बुलाया गया।
1: मैंने किसी का कभी सोच नहीं है सिवाय आपके के, तो मैं तो वैसे ही चला रही थी रेडियो, तो आपका शो सामने
0: सुना करें ना, किसी और के शोज भी सुना करें, इतने प्यारे प्यारे आर्जेस आते हैं हमारे, सबके शोज सुना करें।
1: नहीं बस आपका अच्छा लगता है इसलिए सुनते हैं, कभी
0: बाकी
1: किसी को खोलने की आप तो भी कभी करते हैं, आपको पता
0: अच्छा,
1: ही है।
0: अच्छा अच्छा खुश रहें, खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन सुनेंगे आपको तो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे आर्जेस आपको मिलेंगे। बस बात निकलवानी थी मैंने। अच्छा ठीक है, चले खुश रहे, सलामत रहे। क्या कहेंगे और
1: क्या कहना है, दुआओं की भीड़ में एक दुआ हमारी होगी, जब भी आपको खुशी पहुंचे तो समझना दुआ कबूल हमारी होगी।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: एक वो आपने सुनाई थी गजल, अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं।
0: अच्छा
1: उसमें ये भी था, अभी मकतूल ख्वाबों को भी दफनाया नहीं हमने, अभी आंखें इज्जत में हैं।
0: ठीक है,
1: कुछ दिन गुजरने दो, अभी इन जख्मों को भरने दो, अब ये ताजा है, जब ये भर जाए तो सोचेंगे दोबारा कब उजड़ना है।
0: अच्छा ठीक है,
1: ये इसी तरह है, यानी कि इसको ना आपने अपने जुबान से जाके दिखाना है।
0: अच्छा ठीक है, दोबारा से बताइए कौन सी नज्म आपने कही है, अभी कुछ दिन गुजरने दो।
1: अभी पहली,
0: अच्छा अभी पहली,
1: बहुत से कर्ज बाकी हैं।
0: ठीक है चल,
1: पता नहीं मुझे तो याद नहीं है।
0: ठीक है चले, सुनाऊंगा जी सुनाऊंगा। ठीक है ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बैक टू बैक कॉल्स हैं जनाब, और ले लेते हैं हम भी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब,
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शाह साहब खैरियत?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ।
2: आज वैसे तो हैरान ही हो गया हूँ।
0: अच्छा
2: कि सुनना किसको था, तो आ कौन गए?
0: ठीक है
2: जी, तो बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना है बीजीएम, और तो मैंने कहा ये तो सुना हुआ होगा बीजीएम है।
0: अच्छा
2: तो जब आवाज सुनी तो फिर पता चला कि ये तो शाह साहब है।
0: सलामत रहिए जनाब, खुश रहिए,
2: बहुत शुक्रिया।
0: क्या कहेंगे? तो
2: जी ये हमारे प्रेजेंटर हैं, बहुत पुराने हैं, और शायद आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, हैदर फारूक साहब।
0: जी जी,
2: शायर भी हैं और प्रेजेंटर भी हैं।
0: हैदर फारूक साहब से जब मेरा पहला तारुफ हुआ था तो मुझे उनका नाम, जिसने मेरे मेरे मोबाइल में सेव करवाया था ना नंबर, उसने कहा था प्यारे दोस्त के नाम से सेव करें।
2: इसीलिए तो मैंने जो गजल लिखी है ना, कि उम्रें लग जाती हैं प्यारे ना आप बताने।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: उम्रें लग जाती हैं, ये उन्हीं की गजल है। उम्रें लग जाती हैं प्यारे अपना आप बताने में, तूने थोड़ी जल्दी की है मुझको छोड़ के जाने।
0: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: तूने थोड़ी जल्दी की है मुझको छोड़ के जाने में।
0: बहुत अच्छा।
2: हर एक से मेर मोहब्बत तुझको तनहा कर देगी, हर एक से मेर मोहब्बत तुझको तनहा कर देगी, देख देख बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, कोई
2: मिलाने से लकीरें मिट जाती हैं, हर एक से हाथ मिलाने में।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: लकीरें मिट जाती हैं
0: हर एक से हाथ
2: मिलाने में। तूने थोड़ी जल्दी की है मुझको छोड़ के जाने
0: में।
2: वैसे अगर हो सके तो है हमद साद हमद अली की आवाज में आई गजल।
0: अच्छा चले मैं जरूर ढूंढूंगा जनाब, जरूर ढूंढूंगा। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहिए।
2: शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके स्पेयर सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब कुछ कैफियत ऐसी हुई आपको सुनते ही, तो खुश रहें जी,
0: सलामत रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तुमसे पहले भी मोहब्बत तो मुझे थी लेकिन ऐसी मुझोर न थी जो मेरी रूह में तहलील हुई जाती है, दौड़ती है जो मेरे जिस्म में लहू बनकर, दिन ब दिन छीन रही है जो मुझे खुद मुझसे, दिन ब दिन सौंप रही है जो मुझे बस तुमको, देखने देती नहीं और किसी समत मुझे, सोचने देती नहीं और कोई बात मुझे, धड़कने एक ही तस्बीह किए जाती हैं, दिल की हालत ये मेरी जान किसी तौर न थी, दिल की हालत ये मेरी जान किसी तौर न थी। तुमसे पहले भी मोहब्बत तो मुझे थी लेकिन ऐसी मुझोर न थी। जी हजूर, मोहब्बतों के जाब्ते, मोहब्बतों के करीने और मोहब्बतें वारिद होती हुई। अक्सर कहा करता हूं कि मोहब्बत वारिद होती है एक वक्त में दो लोगों पर, कोई पास रखता है कोई मान रखता है उस मोहब्बत का, और कभी यूं भी होता है कि दोनों ही पास रखते हैं लेकिन कुछ हालात हुआ करते हैं, कुछ कुछ ऐसे वाकयात हुआ करते हैं कि इंसान को जिंदगी में वो सब कुछ हासिल नहीं हो पाता जिसकी वो जस्तजू में होता है, जिसकी वो तमन्ना किए होता है।

जी हाँ जनाब, तो जिक्र कर रहा था मोहब्बतों का और हमें हैरत से मत देखो, अब ऐसा क्या किया हमने, जमीनी इश्क है साहब, दोबारा हो भी सकता है। ये मोहब्बत का जज्बा हम इंसानों के अंदर कहीं ना कहीं मुंजमद रहता है, इसको कोई तमाजत पिघला देती है और फिर हमें यूं लगता है कि हमारा पूरा वजूद मोहब्बत है। उस एक वक्त में, उन चंद लम्हों में कोई एक शख्स बहुत अजीज हो जाया करता है। मोहब्बत में अकीदत ना हो तो फिर वो मोहब्बत नहीं, लगाव हुआ करती है। अकीदत का होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान तो जो कि इरादा इख्तियार में बहुत वसत रखता है, वो खुद को साबित करने के लिए, खुद को मनवाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया करता है। यही कर रहे हैं हम इंसान। अगर हम गौर करें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर तो हम यही कर रहे होते हैं। मैं भी जो बोल रहा हूं वो ऐसा ही कुछ जहन में किसी कोने में होगा कि मैं खुद को मनवा लूं, कुछ ऐसा कह दूं कि किसी समाज तक पहुंचे और उसको बहुत भा जाए। ऐसे हुआ करते हैं हम इंसान। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो खुद को मनवाने के लिए कर रहे होते हैं। शायद मोहब्बतों में ऐसा होता नहीं है और मोहब्बतों में भी यही काविश हुआ करती है। बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। बाकी है खाक कुए मोहब्बत की तिश्नगी, अपने लहू को और भी अर्जा करेंगे हम। ऐसी ख्वाहिशात हुआ करती हैं और बहुत मासूमियत हुआ करती है। नशेब फराज तो हर शय का हिस्सा है। जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं, कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जो एक सा रहे। हर शय को जवाल और उरूज आता है। मोहब्बतों में भी जवाल हुआ करते हैं, वसल की घड़ियां और फिर फिराक के लम्हे। इन सब से दो चार होता चला जाता इंसान। कभी मोहब्बतों की इंतहा पर चला जाता है और कभी बिछड़ना है तो खुशी से बिछड़ो, सवाल कैसे जवाब छोड़ो। किसे मिली है जहां की खुशियां, मिले हैं किसको अजाब छोड़ो। नए सफर पे जो चल पड़े हो, मुझे खबर है कि खुश पड़े हो। है कौन उजड़ा तुम्हारे पीछे, ये किसके टूटे हैं ख्वाब छोड़ो। मोहब्बतों के तमाम वादे निभाए किसने, भुलाए किसने तुम्हें, पशेमानी होगी जाना जो मेरी मानो, हिसाब छोड़ो। और बिछड़ते दामनों में अपनी कुछ परछाइयां रख दो, सकूते जिंदगी में दिल की कुछ बेताबियां रख दो। कहीं ऐसा ना हो मैं दूर खुद अपने से हो जाऊं। मेरी हस्ती के हंगामों में कुछ तन्हाइयां रख दो, रहे बाकी ना फिर सूदो जिया का मसला कोई। मेरे खुरमन में अपने हाथ से चिंगारियां रख दो, किसी को बख्श दो इज्जत, किसी को सीम और जर दे दो। मेरे हिस्से में राह इश्क की रुसवाइयां रख दो, ऐसे हुआ करते हैं और कबूल कर लिया करते हैं जो कुछ भी है शख्स। अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। कैसे अजीब हुआ करते हैं इंसान, कैसे अजीब जज्बात हुआ करते हैं इंसानों के, और कितने इख्तियारात होने के बावजूद कितने बेबस हुआ करते हैं। कि बंद हो जाए मेरी आंख अगर इस दरीचे को खुला रहने दो। ये दरीचा है उफ़क़े आईना, इसमें रक्सा है जहां के मंजर। इस दरीचे को खुला रहने दो, इस दरीचे से किए हैं मैंने कई बेचश्म नजारे, कई बेराह सफर। इस दरीचे को खुला रहने दो, ये दरीचा है मेरी शोक का चाके दामा।
मेरी बदनाम निगाहें, मेरी रुस्वा आंखें, ये दरीचा है मेरी तिश्ना नजर। बंद हो जाए मेरी आंख अगर, इस दरीचे को खुला रहने दो।

इंसान अपने जज्बात को अपने साथ लिए उनका बार उठाए, इस जिंदगी की मुसाफत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हसरतें हम इंसानों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती हैं। मोहब्बतें हमारा हासिल और मोहब्बतों में गुजारा हुआ दौर, उसकी इंतहा जैसी भी हो, उसका अंजाम जैसा भी हो, वो दौर बहुत खूबसूरत होता है। आगाज़ मोहब्बत और जिस समत भी देखो नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है, खुशबू है, झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है, साया है कि तुम हो। यहां से लेकर यहां तक का सफर के जो ख्याल थे ना कयास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो मोहब्बतों की असास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग हैं मेरे हमसफर। मुझे हर तरह से जो रास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। ये ख्याल सारे हैं आरजी, ये गुलाब सारे हैं कागजी, गुले आरजू की जो बास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। यहां तक का सफर हुआ करता है। कभी आगाज में होता है कि कब कहां क्या मेरे दिलदार उठा लाएंगे, वसल में भी दिले बेजार उठा लाएंगे। चाहिए क्या तुम्हें तोहफे में बता दो, वरना हम तो बाजार के बाजार उठा लाएंगे। कौन सा फूल सजेगा तेरे जुड़े में भला, इस शशो पंज में गुलजार उठा लाएंगे।

कलाम करता था कौसे कजा के रंगों में, वो एक ख्याल था और शायरी में रहता था, गुलों पे डोलता फिरता था और उसकी सूरत सदा की लहर था और नगमगी में रहता था।

नहीं थी उसने नजर की भी कुछ उसे परवा, वो एक ऐसी अजब दिलकशी में रहता था। वहां पे अब भी सितारे तवाफ करते हैं, वहां पे अब भी सितारे तवाफ करते हैं, वो जिस मकान में जिस भी गली में रहता था। बस एक शाम बड़ी खामोशी से टूट गया हमें जो मान तेरी दोस्ती में रहता था, हमें जो मान तेरी दोस्ती में रहता था। खिला जो फूल तो बर्बाद हो गया अमजद, तलिस में रंग मगर गुंचगी में रहता था।

अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं, अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं, अभी पहली मुसाफत की थकन से चूर हैं पांव, अभी पहली रफाकत का हर एक घाव सलामत है, अभी मकतूल ख्वाबों को भी दफनाया नहीं हमने, अभी आंखें हैं इद्दत में, अभी ये सोग के दिन है, अभी ये सोग के दिन है, अभी इस गम की कैफियत से बाहर किस तरह आए, अभी इस गम को बढ़ने दो, अभी कुछ दिन गुजरने दो, ये गम के नीलगुं दरिया उतर जाएं तो सोचेंगे, अभी इस गम को बढ़ने दो, अभी कुछ दिन गुजरने दो, ये गम के नीलगुं दरिया उतर जाएं तो सोचेंगे, अभी ये जख्म ताजा है ये भर जाएं तो सोचेंगे, दोबारा

0: चुराएंगे।
1: बहुत अच्छा।
0: तेरे लिए जान जाएंगे।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप भी आर्टिस्ट हैं जनाब, आप थोड़ा गौर करें, आप किसी और तरफ चले गए।
0: आप, नहीं, नहीं शादी।
1: आपको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज दी है, उस पर थोड़ा गौर करें।
0: आप तो वैसे भी मतलब मुर्शिद है, शादी है, बात है, और वैसे भी जिस मुकाम पे अल्लाह ने आपको रखा है,
1: नहीं वो तो
0: चले आपसे जो है ना बड़ी होती है, मोहब्बत शो करना हर इंसान पे लाजमी
1: है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। मोहब्बत करते हैं हम सबसे।
0: आपकी मोहब्बत ही है ना हम सभी, आपको इतने प्यार से सुनते हैं, आप मोहब्बत वाकई आप इस काबिल है कि आपसे मोहब्बत,
1: बस उसी मोहब्बत में आ जाते हैं जनाब। ठीक है जी, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें।
0: सलामत रहें,
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, परवीन आसिफ बोल रही हूँ कराची से।
1: कैसी हैं आप? ठीक हैं?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह आप भी ठीक हैं। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, इतना खूबसूरत इत्तेफाक हुआ है। मैं लाहौर का प्रोग्राम सुन रही थी ना, 10 से 12 वाला, तो लाहौर से आवाज बहुत कम आ रही थी, तो मैं आपके इस्लामाबाद से सुन रही थी। अच्छा, इतना अजीब इत्तेफाक हुआ, उन्होंने वाइंड अप किया प्रोग्राम, और वो फौरन ही एक सॉन्ग बड़ा अच्छा आप लोगों की तरफ शेयर लगा, वो आंसू वाला जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा भी लगता है। क्या है वो पता नहीं, आंसू पे है कुछ, तो मैंने कहा ये सुन के फिर मैं बंद करती हूँ, मैं इस्लामाबाद से और कोई प्रोग्राम नहीं सुनती सिवाय आपके इस प्रोग्राम के।
1: अच्छा
2: अच्छा, वो खत्म हुआ तो वो आपको भी रोज बना शुरू हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक, मैंने कहा ये हाथ का कैसे किसने लगा लिया। खैर मैं इसी कश्मकश में थी कि वो आपकी आवाज आई, मैं यकीन नहीं, मैं चौंक गई, मैंने कहा आज तो संडे है क्या, मुझे बहुत याद किया नहीं, आज तो फ्राइडे है।
1: हाँ जी।
2: तो बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक हुआ, वरना बाद में पता चलता तो मुझे बहुत अफसोस होता। आज प्रोग्राम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी शायरी और नगमान भी उसके साथ साथ बहुत अच्छे। खास साहब जब आ जाते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है, तुम्हारा लिए खूबसूरत प्रोग्राम इसी तरह अगर आ जाएगी है ना कभी कभी, लोग बुलाया करें आपको तो।
1: वो बुलाए तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो।
2: वाकई में ना आए तो लेकिन मैं दाद देती हूँ आते, इतनी जल्दी आपको बुलाया, जाहिर है कि आज ही कहा होगा, इतनी तैयारी तो खैर आपकी मेरे घर में ऑलरेडी रहती ही रहती है।
1: ऐसे ही है।
2: इतना माशाल्लाह आपको याद है, बहुत खूबसूरत शायरी पढ़ रहे हैं।
1: बहुत शुक्रिया।
2: इस तरह अल्लाह ताला आपको हाफिज़ा और अच्छा करे,
1: आमीन,
2: बहुत आगे तक जाए। मैं भी आपको सुनाती हूँ, जरा सा ये है कि जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में
1: तुमसे क्या कहें जाना, इस कदर
2: तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में, वक्त की रवानी है वक्त की गिरानी है, सख्त बे जमीनी है सख्त लामकानी है, इज्ज़त के समंदर में तख्त तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है,
1: तुमको
2: जो सुनानी है बात वो जरा सी है, बात उम्र भर की है, उम्र भर की, उम्र भर की बातें दो घड़ी में,
1: उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं,
2: दो घड़ी में होती हैं,
1: दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं बेशुमार मोती हैं।
2: क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब, बिल्कुल यही है। और आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस किले की है, जो लहू की खिलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है, जिंदगी से लंबी है आए बात रत जगे की है, जिंदगी से लंबी है बात रत जगे की है, रास्ते में कैसे हो बात तखलीये की है,
1: और तखलीये की बातों में गुफ्तगु इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है।
2: जी, और आखिरी
1: हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। अमजद इस्लाम, अमजद साहब का कलाम और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत
2: बात ये है ना आतिर के, वो तखलीये की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है, हो सके तो सुन जाओ, बहुत ही खूबसूरत दो मिसरे हैं, हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। अमजद साहब की तो बात ही क्या है जनाब,
1: ये
2: किताब खोल लो तो बदले जाते हैं, बुढ़ पे चले जाओ। खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद आते, और आप आगे इसके लिए शुक्रिया, जीते रहिए, आबाद रहिए, जो जो लोग भी सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़, खैरियत से घर पहुँचिएगा, अल्लाह हाफिज़।

मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा कदम, वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का कदम, जैसे सा पगामा पगा का सारे वो तबले की तरखट पे तक थिन तनक धिन धना धिन बहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां कितनी बारीकियां कितने कलियां बलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह कितने मेहदी हसन मुंतजर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सके। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रास्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है, उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है, ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में हर एक इल्म फन में हर एक दास्तान में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है, कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है।

शुक्र किया है इन पेड़ों ने सब्र की आदत डाली है। शुक्र किया है इन पेड़ों ने सब्र की आदत डाली है। इस मंजर को गौर से देखो, बारिश होने वाली है। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी। शुक्र किया है इन पेड़ों ने सब्र की आदत डाली है। इस मंजर को गौर से देखो, बारिश होने वाली है।

बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ, बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। अपनी मर्जी से सब चीजें घूमती फिरती रहती हैं। बेतरतीबी ने इस घर में इतनी जगह बना ली है। देर से कुफल पड़ा दरवाजा एक दीवार ही लगता था, उस पर एक खुले दरवाजे की तस्वीर लगा ली है। और हर हसरत पे एक गिरासी पड़ जाती थी सीने में, हर हसरत पर एक गिरासी पड़ जाती थी सीने में। रफ्ता रफ्ता सब ने मिलकर दिल सी शक्ल बना ली है। ऊपर सब कुछ जल जाएगा, कौन मदद को आएगा। जिस मंजिल पर आग लगी है सबसे नीचे वाली है। एक कमरा सायों से भरा है, एक कमरा आवाजों से। आंगन में कुछ ख्वाब पड़े हैं, वैसे ये घर खाली है। एक कमरा सायों से भरा है, एक कमरा आवाजों से। आंगन में कुछ ख्वाब पड़े हैं, वैसे ये घर खाली है। पैरों को तो दश्त भी कम है, सर को दश्त नवर्दी भी। आदिल हमसे चादर जितनी फैल सकी फैला ली है। बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है।

है ऐसी जिसकी मर्जी के बिना वो चाह भी नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। उसको मोहब्बत के मानी सिखाने का मकसद ये था कि वो निगाह दौड़ाए इस कायनात पर, इसकी वसतों पर, और जब वो ये जान ले कि मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, तो फिर इस कायनात को समझ सके कि क्यों सूरज में तमाजत है, क्यों बाद सबा में खुनकी है, क्यों कुछ मनाजिर आंखों को खीरा करते हैं, क्यों कुछ खुशबुएं फजाओं को मुअत्तर कर दिया करती हैं, क्यों हमें मौसम भाने लगते हैं, क्यों हमें बारिश अच्छी लगती है, क्यों ये मनाजिर, ये पहाड़, ये दरिया, ये आबशारें, ये झरने, ये झीलें, और ये परिंदे और इनकी मौसीकी क्यों इंसान को भाती है, क्यों इंसान को ये मनाजिर दिखाकर बसारत दे दी गई है, क्यों उसको ये मौसीकी सुनाकर समात दे दी गई है, क्यों उसको ये खुनकी और ये तमाजत दुनिया में रख के हिस्से लामिसा दे दी गई है। वो क्या ताकत है, वो कौन खालिक है जो इतनी नेमतें बनाता चला गया इंसान के लिए कि इंसान की उन पर नजर ही नहीं जाती जब तक वो मोहब्बत के मानी को समझ न ले। इंसान वो जो कहता है कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो मुझको जैसे ध्यान आया जिसका दिल मैंने तोड़ा था, वो जाने कैसा होगा। जब ऐसे जज्बे रखता है इंसान इंसानों के लिए तो वो कौन सा दर्जा हुआ करता है जब वो मतवज्जे हो जाता है उस जात की जानिब जो कहते हैं कि तुम मेरी तरफ चल कर आओ तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा, जो कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, जो कहते हैं बहुत जल्द कुछ ऐसा अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, जो कहते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर इंसान गौर करे तो और पहुंच जाए उस मकाम तक, उस मेराज तक जो कि इश्क से होती हुई जाती है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जब इस आग के दरिया को इंसान अबूर कर लिया करता है तो सामने जो मंजिल हुआ करती है, जो मंजिल उसको नजर आती है या जो उसको दिखा दी जाती है, जब वो कहते हैं कि हम तुम्हें जुलमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाएंगे, तो अगर वो अपनी आंखों को खीरा करना चाहे तो वो उस नूर को देख सकता है, महसूस कर सकता है, जहां पर उसको कोई गम नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, फिर यह नहीं होता कि जिंदगी में यह नुकसान हुआ था, जिंदगी में बेवफाई झेलनी पड़ी थी, जिंदगी में कुछ दर्द हुआ था, जुदाई का दुख था, फिर नुकसान नुकसान नहीं मसलहत बन जाता है। वो इंसान जो कोई दुख उठाता है, कोई दर्द उठाता है और इस नियत के साथ आगे बढ़ता है कि किसी को इस दुख में देखूंगा, किसी को ऐसी तकलीफ में देखूंगा तो उसकी वो तकलीफ दूर कर दूंगा, मैं जो एक अहद से कफस में था मैं ये ठान कर फिर रहा हुआ, कहीं कोई पिंजरा दिखा मुझे तो हर एक परिंदा उड़ा दिया। जब इंसान इस जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो फिर राहें आसान होती चली जाती हैं, फिर नफा भी नफा नहीं रहता, रहमत बन जाता है और नुकसान मसलहत बन जाता है। और कमाल के हुआ करते हैं ऐसे इंसान जिनको वो राह मिल जाती है जो सिराते मुस्तकीम है और उस पर झूमते चले जाते हैं उस नूर की जानिब जो कि हकीकी मंजिल है, अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज।
اور جب منزلیں خوبصورت ہوں تو راہوں سے محبت ہو جاتی ہے. کمال کے یہ لوگ اپنی زندگی میں کمال کرتے چلے جاتے ہیں, اس راہ پر جھومتے ہوئے سراپا عشق بنے اپنی خوبصورت منزل کی جانب. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے, اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا, مزاج اپنا, پسند اپنی, کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے, ہٹا کے پتھر, پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے, شکست کھائے, لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور ہزار طاقت ہو, سو دلیلیں ہوں, پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت, دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. زندگی میں جو درکار ہو وہ تقسیم کیجئے, خوشیاں چاہیے تو خوشیاں بانٹیے, آسانیاں چاہیے تو آسانیوں کا سامان پیدا کیجئے, اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبا ہوا کانٹا نکالیے. رب تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا آپ کی زندگی پر. کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا, اور کوئی بات سما خراشی کا باعث میں نہیں ہو تو معذرت چاہوں گا. سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اتوار کی شب یعنی پرسوں شب آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.